हर संग रखवाला पूर्ण पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम।

दिखारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक बलहारिया सब गुण किस ही ना है हर पूर पंडारिया चहुं दिस जपिए नाउ सुख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुर काढ़।

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो

प्यारे अहंस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे। साधन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिले

जियो गुर पुरख बिधाते, पुरखो बिधाता एक श्री धर। क्यों मिलहै तुझे उडीनियां, कर करहै सेवा शीश चरणी।

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तु

सागर निमख सिमरत साधिए। कलमल है दहता शुद्ध करता दिन सुरैन अराधो बिनवंत नान।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया।

समाने प्रगट पुरख सब ठाऊं जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तिह जपना। श्लोक

होत सब जाकी, तज अभिमान छुट्टै तेरी बाकी। रण दरगह तौसी जह पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह जा।

अखर महंत्र पवन प्रवत हरे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पै परमा, अखर मुकत जुगत पै परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा,

भजन गुरुदेव बंध पर सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर।

अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ काल कलेश तन माहे मिटावाओ सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आखेर।

सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन दिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सो पहला प्रभ कै सिमरन सुफल फला।

अधमन्ते प्रभु कौ सिमरह से पतवन्ते प्रभु कौ सिमरह से जन परवान प्रभु कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु कौ सिमरह से बे मोहताजे प्रभु कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभु कौ सिमरह से सुखवासी प्रभु कौ सिमरह सदा अवे

एक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझै, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम वह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन।

अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल माया, शब्स नाहे कछ करै छिपाया। बाहर ज्ञान

सुखमंदर तिसह त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहें।

होते कई कोट पीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार हैं, कई कोट कब का विचार हैं, कई कोट नव तन नाम ध्यान है, नान करते का अंत ना पाव है। कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी।

अष्टपदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहरना तृष्णा लाग आए मारे राख को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म बूझ।

तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी, जब एक कह हरागमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तहै, तब कवन निडार कवन कत डरै, आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अविगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछ

बाप मित्र सुत पाई, जह सर्ब कला आप है परवीन, तह वेद कतेब कहां को चीन। जब अपने आप उरत हारे, तो शगन अपशगन कहां बिचारे। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप। जह अशल अशेद अपेद समाया, ऊहां किसह व्याप्त मा।

श्रेष्ठम चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान।

पंच प्रधान ते जिह जान्यो पर पंच कुसंबास बहुरंग कणो सब मिथ्या बल बंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस बेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहुजोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान संग।

मुख खोले मन खोटे दिए विछोड़े। श्लोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा।

सेवा करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे भगत।

बीज महराव रहो, जाको तीन लोक विस्तार। अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद।

खाए, आद पुरुष मह रह समाए, द्वितीया दुह कर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना ओह बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एकै पहाए, तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावे, साध

अर्ध उर्ध बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल सामान चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मुरार सत संतोख का तरहो ध्यान कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान।

साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान।

करै दुख बिखिया सुख तन पर हरै काम क्रोध अंतर तन हिरै दुविधा छोड़ नाम निस्तरै सिफत सलाहन सहज आनंद सखा सैन प्रेम गोविंद आपे करे आपे बख्शिंद तन

गुरमत हर गुण बोलो जोगी। इहो मनुआ हर रंग पेन जोगी, हर देहो मती उपदेश, जोग जोग हर हर एको वरतै, तिस आगे हम आदेश रहाओ। गाव है राग भांत बहु बोल है।

जीवत दिसै तिस सर पर मरना मुआ होवे तिस नेह चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे हर हर नाम।

सम्हारे एको एक आप एक एक है सगला पासारे जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्दम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया पाए पर है सतगुरु कै जिन परम बिदारिया कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया रहा कर गहली ने अपने सच हुक्म रजाई जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई सदा सदा गुण

आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल कृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कैर दै बसिया मिटे तिसह विसूरिया अगाध बो

इष्ट छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद न बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम।

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ, जल तरंग

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिल तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत

साध संग उधार इहो मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटाय सगल उपाद अटल अशेष।

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। सतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समर

गुर शब्द हर रमणम मत तत ज्ञानम कल्याण निधनम हर नाम मन रमणम चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितम।

मन मनम सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर भवजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ शरणी लब लो।

कहे फूल है आनंद बिखै सोग, कब हसनो कब रोइए, कब हू मैल भरे अभिमानी, कब साधु संग धोइए, कोई न मेटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइए, कहो नान।

ऐसा तज रहे गुरमुख पिखिया नाउ तिसके चरण पखाली है नानक हौ बलिहार जाऊ महला तीजा। नानक तरवर एक फल दो पंखे रुआ है आवत जात न दिस ही ना पर पंखी ताहे।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवे सोए, गुरमुख शब्द सच करणी सार, गुरमुख नानक परवारे साधार। वडहंस महला तीजा।

चलिए जो हर प्रभु का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

निर्मल मन करना, कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

जन्म गवावहे। एक मूढ़ मुगदना चेतह मूले जो आया तिस जाना, नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाणा तेरा।

सदा सुख बस है, सदा सच रत्ता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजे पाए परम विभूति।

निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई मनमुख अंधले ज्ञान विहूण दूजै पाए खुआई।

अवर न पाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सो पाखिया।

मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जीवड दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा।

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रथ जगत सगल देहथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हौ कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

प्रयाण ज्योतिष पावे समरथ सोथिये हिलड़ा हो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख।

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो गुण।

ही मिल है जे सतगुर लागह साचे पाए सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए सच्चे ही सचराती सच्चे शब्द सदा

जाए। सतगुर मिलै तन निर्मल होवै, हर नामो मन वसाए। नानक नाम ध्याया सुखदाता, दुख विसरिया सहज सुभाए। पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसिया, तिस गुर कौ हों सदा घुमाया। तिस गुर कौ हों खनिए, जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया।

पौड़ी। तू करता सब किश जानदा, सब जी तुम्हारे, जिस तू भावै तिस तू मेल लह, जिस तू भावै तिस तू मेल लह। क्या जंत विचारे, तू करण कारण समरथ है, सत सिरजन हारे, जिस तू मिल है प्यारिया, सो तुद मिले।

हन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याएंदे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों।

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पहगी।

आई किव छूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जप्यो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जप

सुख गर्दब पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचियावत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग मह पवित्र पद पवित्र पुनीत जात अकार्थ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म के